0: आई हुई है मरा वो जो एक ले इस तो बायो लेकर यो बकरा मन लेकर मस्जिद मन अत मुस्लिम मत्रा का नहीं आउ दा मदस मदस कहता वाह बायो मोई दंड कम अंतरिर मत रोट बने अबंस बोल
1: पैरांकी फ्रेडी